0: 喂，喂，喂，तू किधर बैठा बस ले?
1: काई ना इच्छु।
0: तू काई ना मना ना कबे। तू जब पोटंग गुर्गियां सा, ते तू काजाए, उनो, दाटूक ते ना का।
1: किच्छु।
0: वही बे। काल तुम्हें उले तनावे सुगलाई करे बे। बे, तुझे पाय पुनी दरता बे। क्या गुर्गियां मातला गाड़ खड़ी ना कबे? मका तुझे बाव मन चिंत बे। क्या बुर्गिया करे बे? क्या बुर्गिया करे?
1: तुझे बरी सदैर मात्र दिता
0: बाय बाय हाँ तुझे दैर मात दीना बाय तुझे संगत हाँ वसा बाय तुझे संगत हाँ वसा मका तुझे बाव मन चीत बाय तो न क्या बुर्गिया मात लगा ठा दीना का बाय क्या बुर्गिया कुरे बाय तू का नाका दर वोडना बाय मका भी हाँ बसता बाय हाँ बसता
1: ना इच्छु मका हे बुर्गिया जाय मुझे याशे तू मका आधार जाऊं राव तैतर तुका मस्त थैंक्स इच्छु
0: तशे मना ना का बाय तशे मना ना का तू उस बाय भीतर उस
2: बरे एंकर नुमल हातांक बॉल नतले परी उमलनु चिकोल पनी उरला तर बोटा नडाईता

भाई पढ़ ले भाई, तू कहानी था का सरगा नियम को अंतर असा हे मगा गरज ना भाई तरी आओ एक लखा मासो देखने सगले करता तू कन करे ना।